नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:55 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रातःकालीन प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिचैनल। सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप कार्यक्रम विवरण सुनेंगे।

श्रोताओं, थोड़ी देर बाद 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 9:10 पर होगा रामचरितमानस का। 9:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे झल की तिजोरी। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 बजे आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। 11 बजे से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुनेंगे और दिन में 1 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। शाम 5 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम युववाणी। 5:30 बजे होगा बालवाड़ी कार्यक्रम। 6:05 पर आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्म संगीत का। 6:20 पर होगी माटी के स्वर की संगीत लहरियाँ। 6:30 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 7:15 बजे आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप आज सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। 7:30 बजे होगा फिल्म संगीत और 8 बजे आप लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कर

कार्यक्रम हेलो कोरबंद का लुत्फ उठा सकेंगे। 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगे। हम भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए, जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अभेद्य बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3

0: से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
1: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार को मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
1: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
3: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट more than 5,000 items की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का जिरमे चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में अगला भक्ति गीत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा को। इसी भक्ति गीत के साथ हमारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं झलकी, जिसका शीर्षक है तिजोरी।

0: मैं कहती हूँ कि जब भी मेरा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी आता है या उनके आने का समाचार आता है तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता है। आज मेरा भाई आ रहा है तो तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा है।
1: मूड ऑफ ना हो तो क्या हो, पहले ही हमारे सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई और ये बच्चों की फौज।
0: अरे ये बच्चों की फौज क्या मैंने बढ़ाई है?
1: और नहीं तो क्या मैंने बढ़ाई है? खामखा मेरा दिमाग खराब ना करो, मैं भी इंसान हूँ, कोई गधा नहीं।
0: मैंने तो तुम्हें गधा या भैंसा नहीं कहा, अपने आप कुछ भी बनते रहो। तुम्हारे घर में क्या आई, पिछले 15 बरस से अपने भाई की सूरत तक देखने को तरस गई। कान खोल कर सुन लो, मेरा भाई आएगा आएगा आएगा, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
1: अच्छा बाबा अच्छा।
0: अच्छा नहीं, मैंने उन्हें तार भी दे दिया है।
1: क्या
0: बना लिया ना तीन कोने का मुंह, तुम मुंह सिकोड़ो या कुछ भी करो, तार में लिखवा दिया है कि पहली गाड़ी से चले आओ और आज अभी थोड़ी ही देर में गाड़ी आने ही वाली है, समझे? मैं रसोई घर में जा रही हूँ। गुड़िया बंटी चुनिया जुनिया डब्बू गब्बू चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मामा जी आने वाले हैं।
1: उफ, साला कहीं का, यहाँ तो न जाने कैसे जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं, और ऊपर से ये बेरोजगार साला, नहीं आ सकता उसका भैया।
0: क्या आ गए भैया?
1: जी नहीं, आ जाएंगे तो आपकी खिदमत में फौरन हाजिर करूंगा। देखता हूँ साला कैसे आता है, शायद आ गया साला। क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? मेरा मतलब है आप, पर इतना बड़ा बक्स लेकर, शायद काफी सामान लाया है साला।
2: आप किससे बातें कर रहे हैं
1: जी? मामा भाई मैं बिल्कुल समझ गया, आप बच्चों के मामा हैं। अरे जुनिया की माँ पता नहीं क्या कर रही है। अरे गुणवंती जल्दी आओ, साले साहब आ गए हैं।
0: क्या भैया आ गए?
1: अरे इस बार तो वह बहुत बड़ा बक्सा लेकर आए हैं अपने लिए।
0: बच्चों के लिए कपड़े लत्ते लाए होंगे, मेरे लिए साड़ियाँ और
1: मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे मैं भी तो उस साले का कुछ लगता हूँ।
0: तुम तो बुराइयां कर रहे थे, आखिर घुटने तो पेट की तरफ ही मुड़ेंगे ना, भाई को क्या अपनी बहन पे तरस नहीं आएगा?
1: शायद कोई बड़ी नौकरी मिल गई है।
3: बहन जी।
1: उफो, वो बुला रहा है, मेरा मतलब है बुला रहे हैं।
0: अरे बक्सा तो उतरवाओ।
1: कितना कंजूस है तुम्हारा भाई, क्या एक कुली भी नहीं कर सकता था?
0: चलो पहले बक्सा तो उतरवाओ। सुनो ये कौन है?
1: क्या तुम्हारा भाई नहीं है? जी कौन है आप?
2: जी मैं
0: अरे शायद पीछे आ रहे होंगे, सामान इसके हाथ भिजवा दिया होगा।
1: मैं भी तो यही कहूँ कि इतना खस्ता हाल तुम्हारा भाई हो ही नहीं सकता।
2: जी इसे तो उतरवाइए।
1: अरे बाप रे इतना भारी। लेकिन भाई साहब आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आप तसल्ली से बैठिए।
2: जी मैं वो
1: क्या 10 रुपया एक बक्स का, अरे वो सामने तो रहा स्टेशन।
0: अजी आप भी क्या बातें करते हैं, पता नहीं इसमें कितना कीमती सामान है।
1: ऐसा करते हैं पहले सामान देख ले।

0: पहले ऐसे 10 रुपए देकर दफा करो।
1: अच्छा सुनो, वो जो कल मैंने तुम्हें 20 रुपए रखने को दिए थे ना, उसमें से 10 रुपए दे दो।
2: जी
1: ले लो भाई। अरे गुणवंती, इस बेचारे को कोई शरबत वगैरह तो पिलवाओ।
0: अभी लाई।
2: जी माफ कीजिए, आप बार बार बाहर की तरफ क्या झांक रहे हैं?
1: वो बच्चों के मामा, मेरी पत्नी के भाई, यानी के मेरे साले, यानी के बक्सा।
2: कोई आने वाला था क्या?
1: हाँ, वो यानी के बक्सा।
2: ये बक्सा तो मैं खुद लाया हूँ, अब और कोई नहीं आएगा।
1: वो तो है ही, लेकिन तुम यानी के आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं?
2: मैंने कहा ना कि इस बक्से को मैं अकेले लाया हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है।
1: अरे मैं कहता था ना कि यही तुम्हारा भाई है।
0: लेकिन
1: छोड़ो, और फिर तुमने भी तो अपने भाई को मुद्दत से नहीं देखा है, इसलिए डिजाइन बदल गया होगा। अरे खड़ी क्यों हो, शरबत दो ना।
2: जी
1: पी लो भाई, खास तौर से तुम्हारे यानी कि आपके लिए बनवाया है, वरना हम तो पानी पीकर गुजारा करते हैं।
2: जी बच्चे को।
1: अरे बच्चे तो खाते पीते रहते हैं, बड़े शरारती बच्चे।
0: इन्होंने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है।
1: मैंने?
0: और नहीं तो क्या मैंने?
2: देखिए आप लोग झगड़े नहीं, मैं चलता हूँ।
0: क्या आप बच्चों से मिले बगैर चले जाएंगे? घर पे सब कुशल तो है ना?
2: बहन जी सब कुशल है, लेकिन मैं ही मुसीबत में फंस गया हूँ।
1: रोइए नहीं भाई साहब, मेरा दिल बहुत कमजोर है। क्या बात है, आप हमें तो बताइए अपनी परेशानी।
2: जी परेशानी ही बताने आया हूँ, दरअसल मैं चोर हूँ।
0: चोर? और आप?
1: दरअसल साला है ना, इसलिए मजाक कर रहा है। वाह भाई साले।
2: देखिए भगवान के वास्ते गाली ना दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच का चोर हूँ।
1: चोर? तो आप मेरी पत्नी के भाई, मेरे साले और बच्चों के मामा नहीं है?
2: जी नहीं, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। मैं मुसीबत का मारा, तकदीर का ठुकराया एक बदनसीब चोर हूँ। चोरी करना मेरी मजबूरी नहीं, बिजनेस है।
1: चोर साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये बक्सा
2: तो आपका ही है।
0: हमारा? लेकिन चोर जी, हम मुफलिसों का बक्सा चुराने से आपको क्या लाभ?
1: अरे इसमें से तो कुछ आवाज सी आ रही है,
0: खोल कर देखो ना।
1: अरे बच्चा,
0: कितना खूबसूरत बच्चा है।
1: क्या खा खूबसूरत है, कपड़ों से बदबू आ रही है, जैसे किसी अनाथालय से लाया गया हो। अबे लिबर्टा किधर है, दूर हो।
0: बच्चे को क्यों डांटते हो, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं।
1: अरे तुम्हारे इसी डायलॉग ने तो मुझे चक्कर घिन्नी बना दिया है।
2: जी ये आपका ही बच्चा है।
1: अरे चुप बे चोर के बच्चे, पहले ही यहाँ क्या कम बच्चे हैं जो अपनी हत्या को हमारे गले भर रहा है। मैं तो पुलिस के अड़खंजे में फंसता नहीं हूँ, वरना 2 मिनट में तुम्हें अंदर करवा देता मिस्टर चोर।
0: अजी छोड़िए, अभी उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे।
2: आप मेहरबानी करके ध्यान से तो देखिए इसे, ये आपका ही बच्चा है। क्या नाम बताया था? हाँ डब्बू।
0: हमारा डब्बू? हाँ लगता तो वही है।
1: अरे छोड़ो भी, तुम भी इस चोर की बातों में कहाँ आ रही हो। कबे कहाँ रहता है, क्या नाम है तेरे बाप का?
0: इसे डांटो नहीं, ये अपना डब्बू ही है।
1: होगा क्या अपना डब्बू? लेकिन चोर साहब, जब इसको चोरी करके ले ही गए थे तो इसे वापस क्यों लाए? इसे अपना ही हुनर सिखाते हैं।
2: जी इसे चोरी करना सिखाता, यानी इसे भी चोर बनाता। भाई साहब आजकल अपना बिजनेस ठप हो रहा है, रकम गहने रखते हैं लोग बाग बैंक के लॉकर्स में, अब बचा टीवी फ्रिज अलमारी, इसे कहाँ लेकर जाएंगे?
1: कुछ भी हो, चोरी करना है एक आर्ट।
0: अरे आप भाषण ही झाड़ते रहोगे या कुछ करोगे भी?
2: मेरी भी तो कुछ सुनिए।
1: अरे अब और क्या सुनाओगे?
0: अरे उस गरीब को भी एक मौका दो।
2: मैं कई दिनों से भूखा था, कई घरों में चोरी करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। पिछली तूफानी रात में मैं सन्नाटे को चीरता हुआ जब आपके सूने घर में घुसा।
1: सूने घर में? यानी कि घर में कोई नहीं था?
2: कोई भी नहीं।
1: चोर साहब रुकिए, क्यों जी उस रात तुम कहाँ गई थी? मैं बाल बच्चों के?
0: मैं तो पड़ोस में टीवी पर प्रोग्राम देखने गई थी, लेकिन तुम कहाँ गए थे?
1: तुमसे नहीं कहा था मैंने कि क्रिकेट क्लब की मीटिंग है?
0: कभी बल्ला भी पकड़ा है जो कि क्रिकेट की मीटिंग में गए थे? चले हैं मुझे बनाने।
2: देखिए आप लोग झगड़िए नहीं, तो मैं कह रहा था कि अब क्या कह रहा था
0: कि सूने घर में
2: सन्नाटे को चीरता हुआ।
1: ये तो तुम पहले भी कह चुके हो,
2: तूफानी रात में
0: ये भी बता चुके हो, आगे बताओ। जब

0: मेरे को से।
1: हाँ, जब मैं घुसा तो मैंने सबसे पहले ये बक्सा देखा। मैं समझा कि आज लक्ष्मी मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मैंने झपट कर बक्स पर हाथ मारा, संदूक को उठाया और जब वो टस से मस न हुआ तो मैंने समझा ये तिजोरी है। पूरी ताकत से सर पर उठा लिया और अपनी किस्मत पर मुस्कुराता इतराता गाता चल पड़ा। काफी दूर चलते चलते सुबह हो गई और तभी
2: तभी क्या हुआ?
0: कुछ चमत्कार हुआ क्या?
1: हाँ, चमत्कार। मेरी कनपट्टी से बहता हुआ पानी आया तो मैं समझा लक्ष्मी शायद रो रही है।
2: तुमने ठीक ही समझा।
1: नहीं
0: तो फिर क्या हुआ?
1: मैंने इस तिजोरी को सुनसान में उतारा और इधर उधर देखा। मेरी सांस रुक गई थी।
2: मेरी भी सांस थम गई है। पानी पी लेने दो। अब कहो।
1: मैंने तिजोरी खोली तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई।
0: क्यों, क्या तिजोरी में कुछ नहीं था?
1: था, लेकिन
2: लेकिन क्या?
1: ये आपका बच्चा मुझे देखते ही चीख चीख कर रोने लगा तो मुझे अपनी बदनसीबी पर रोना आ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे चुप कराया, बहलाया फुसलाया, अपनी जेबों की तलाशी ली तो 1 रुपए का नोट निकल आया। पास के ढाबे पर इसे लेकर गया, इसे कुछ खिलाया, फिर सोचा अपना पेट तो भर नहीं पाता हूं, इसे लिए लिए कहां कहां फिरूंगा। इसलिए आपका ये बच्चा और तिजोरी वापस लौटाने आया हूं। ये अपने 10 रुपए लीजिए और ये तिजोरी संभालिए। मैं आज से अपना ये चोरी करने का बिजनेस छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। कुछ मेहनत मजदूरी करूंगा लेकिन

अभी आपने सुना झलकी, जिसका शीर्षक था तिजोरी। आइए अब आपको सुना देते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में ये गजल।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत के इस सुंदर से कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के अंतर्गत लीजिए अगला गाना आपके लिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।
6: हकीकत प्यार की जिस दिन वो जालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों कि हसीना मान जाएगी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में फिल्म अभिलाषा से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है R.D. बर्मन ने।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

गाने पुराने ज़माने के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अभिमान से ये अगला गीत।

0: गाने पुराने ज़माने के इस कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अभिनेत्री से ये गीत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: हंसो मत, बोलो।

इस प्यारे से नगमे के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके लिए फिल्म एक था टाइगर के इस गीत से, जिसमें आवाजें हैं के और पलक मुच्छल की। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: गाने नए तराने नए इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। फिल्म का नाम किस्मत, गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत बद किया है आनंद राज आनंद ने।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpress@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: लीजिए अगला गीत आपके लिए फिल्म जग्गा जासूस से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को और आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। और अब हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं अगला गाना। फिल्म का नाम बार बार देखो। आवाजें हैं अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की।

लीजिए अब सुनिए सोनू निगम, नेहा कक्कड़ की आवाज और इसमें साथ दिया है लाभ जांजू ने। फिल्म का नाम क्वीन।

लीजिए अब सुनिए अगला गाना। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी, आवाज़ें यो यो हनी सिंह और सिमर कौर इशर्स की।

लीजिए अब सुनिए ये जवानी है दीवानी फिल्म से अगला गाना बेनी दयाल और शेफाली अल्वेरस की आवाज़ में।

इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम गाने नए तराने नए यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
3: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहु और हेलो फरमाइश, लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रिकर।
2: आइए सुनते।
4: हेलो
5: हेलो फरमाइश।

0: आई सुनते हैं अपनी पसंद का ये गीत।
1: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है। देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू
2: हाँ।
1: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने। कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
2: हाँ।
1: डायरी ला कर दे मेरी।
2: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
1: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
2: हुँ?
1: अच्छा बता कौन सा काम है।
2: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
1: है।
2: अब हम तो क्या पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
1: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी। किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश। बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
2: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
1: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
2: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
1: दफा हो जा, नौटंकी
2: जल जाती है।
1: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
2: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
3: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
2: कहा था ना हमने सासू माँ कि फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया सासू माँ, एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
1: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर।
2: क्यों
1: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर।
2: क्यों क्यों क्यों क्यों
1: क्यों क्यों क्यों क्यों बड़ा कौन
2: आप,
1: सास कौन
2: आप,
1: तो सुनीता कौन
2: आप,
1: तो अनाउंसर बनेगा
2: कौन। ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से करते हैं। अच्छा बताइए सुनीता देवी कौन।
1: मैं।
2: और विविध भारती की फैन कौन।
1: मैं।
2: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है।
1: मैं।
2: तो कॉलर बनेगा कौन।
1: मैं। करम जली दास पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
3: अरे बहू क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने।
2: पिताजी देखिए ना अम्मा फिर पगला गई है, वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
1: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी।
3: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो।
2: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना। चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं ना।
3: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
2: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है। हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
3: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन
3: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं, बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है।
3: एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
2: पिताजी वो हेलो फरमाइश
3: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
1: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर, इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला।
3: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
3: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट। मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहाँ से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है।
1: सुनो जी,
3: हेलो,
1: सुनो जी, चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
3: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन
1: बोल्ड, और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
5: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
3: शट अप
1: शट अप। बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया

0: कहाँ चली आ रही है? अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या? हैं? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: देवा देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही। काय झालं? तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
1: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से, पानी गांव से।
1: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कभी स्वागत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
1: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
1: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या
1: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
0: अरे
1: अरे, यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
1: अरे तुम्हारा लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
1: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
0: वो क्या है ना,
1: बहाने बनाऊंगा का।
0: क्या है ना,
1: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
1: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद भी कर दिया।
1: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
1: मृणमयी, मई मैं जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
0: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
1: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बापरे,
1: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
1: आता आता तुम्हें मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
1: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
1: बहुत बकवास, एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
0: अरे
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी जी, मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
1: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
0: जी मैं हूँ समता सिंह।
1: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो, मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
0: क्या?
1: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
0: अरे बापरे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसी मार पीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: अरे अरे, गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
0: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
1: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो, अपने बॉस का नंबर दो।
0: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
1: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
0: ओ अरे अरे, वो सब छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?

0: रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है। फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ। मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये,
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: सचमुच।
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: हे
1: ट्रेन
0: भगवान,
1: ट्रेन ट्रेन
0: हे
1: ट्रेन
0: भगवान,
1: ट्रेन ट्रेन
0: क्या
1: ट्रेन
0: करूं? फिर फोन बजने लगा, फिर फोन बजने लगा।
1: ट्रेन
0: एक काम करती हूँ, फिर
1: ट्रेन
0: उठा लेती हूँ
1: ट्रेन
0: फोन।
1: ट्रेन ट्रेन
0: हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप
0: वाह
2: बोलती हो तो बोलती ही रहती
0: वाह
2: हो।
0: वाह वाह वाह वाह,
2: आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलिन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
0: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में।
0: और
2: हाँ
0: ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब
2: हाँ जी,
0: है?
2: मैं हूं ना, मैं हूं ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
0: अच्छा
2: करवा लो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब।
0: है फिर जनाब? हद जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो, हाँ
0: हाँ
2: सुनवाओ।
0: हाँ
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का,
0: अरे
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे
0: ये
2: प्यार
0: कहाँ से आ
2: का,
0: गया?
2: यार ने ही लूट लिया घर यार का,
0: ये गायक
2: अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का,
0: खून,
2: यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं
2: हाँ हाँ जी, हाँ जी
0: आपको?
2: ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हम ही एक और गाना सुनवा देते हैं आपको। हाँ तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ ही याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
0: नाता
2: ये
0: है।
2: नाता है
0: अरे
2: तुमसे।
0: मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन
2: हाँ जी
0: वन,
2: हाँ जी हाँ जी,
0: सुनिए तो, सुनिए तो। अरे
2: कितनी
0: फिर
2: मोहब्बत
0: शुरू?
2: है मेरे दिल में, कैसे
0: बाप रे,
2: दिखाऊं उसे,
0: आ वाह वाह
2: कैसे दिखाऊं
0: वाह वाह
2: उसे,
0: वाह,
2: दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए
0: बाप रे।
2: मैं।

0: Cardiescafón. Dice me pyare kareta tha. गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं, ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
1: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
0: अरे फिर बजने लगी घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
2: बोल नहीं रहे हैं, है? बोल रही हूँ।
0: अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
2: आप हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ
2: गाना तो हम बाद में सुनेंगे,

0: हमें आपसे कुछ बात करनी है।
1: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
0: मैं पूना से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
1: है? सास की शिकायत?
0: हाँ,
1: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
0: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कहिए अपने दिल की बात।
1: है?
0: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कहेगी।
1: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
0: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
1: आपकी।
0: तो सच किसे पता होगा?
1: आपको।
0: तो कौन बोलेगा
1: आप?
0: और सुनेगा कौन?
1: आप वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
0: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
1: कहाँ से आ गई है कॉलर? हाँ
0: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
1: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
0: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
1: हाँ
0: मेरी सास खड़ूस है।
1: हाँ,
0: वो मुझे सताती हाँ, है।
1: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
0: चुप चुप, बोलो हाँ वरना।
1: हाँ हाँ भाई हाँ।
0: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
1: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना। हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
0: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
1: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
0: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
1: हाँ
0: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
1: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
0: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
1: अरे हाँ,
0: हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
1: हाँ,
0: बोलो
1: पर,
0: हाँ।
1: नहीं पर हाँ।
0: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
1: अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा। हाँ हाँ,
0: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
1: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
0: हेलो
1: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम ना से रोग हरे से पीरा, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा, ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ। बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी, मर गए। ये मैं कहाँ फंस गई थी, ओफो। मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो अरे बाप रे, ये कॉल लूं कि नहीं लूं? लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
0: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
1: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
0: समता सिंह? अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
1: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो छपा।
1: अरे ये क्या कह रहा? करप चली नाथ पीटी, ये क्या कह? मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
0: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
0: हेलो फरमाइश का सपना?
1: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
2: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
2: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
3: हेलो
4: हेलो फरमाइश
5: था प्रहसन सास बहू और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे. उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें. और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी. हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो कोई कविता हो इसके इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं.
6: बिल्कुल सही कहा आपने. और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था.
5: जी हाँ.
6: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने.
5: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है. तो मंदाग्नि जी ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है. असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे.
6: बिल्कुल
5: हाँ. और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे.
6: बिल्कुल आपने सही कहा. मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी.
5: जी, जी,
6: और
5: जी.
6: हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाए भी करते थे.
5: चलिए इसका मजा लेते हैं.

जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप। पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में, आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप। आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल अपना एयर कूल्ड में ज्वेल थीप ज्वेल थीप ज्वेल थीप।

यह उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने यहां दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन है, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी

कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था। बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म, इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो।

पूरे करें। और विष्णु में बसती थी अंबे, तू है जगदंबे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाएं तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता। सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार 10 सी कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सी कम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था, और इस तरह से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था। कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीरकर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते तो वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी, और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो

कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। यह कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड M.N. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक, घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। यह संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप, ए लेके जा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको? मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दर्शक तो ऐसा था जो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक
मतलब यहां बंदूक से गोली निकली, वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमय रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई ये साले, हा? मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आ आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अच्छा सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हमें एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई है। ठहाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में
ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकोड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की हैं, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देख ये टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हों, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, अब बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिए बैठने दो ना, अरे जगह का दिया, देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या फिर गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था, उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हॉल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे, और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है, 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं, ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है, आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं, अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है, बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है, कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं, उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है,
ये 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ एनआरआई किस्म हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहां जाने जहां, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभरकर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 Idiots ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय।
सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे।

0: ऋषि कपूर, रंजीता, चार खेलों में लैला मंजू, लैला मंजू दोस्तों देखना ना भूले, लैला मंजू हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लैला मंजू रोजाना चार खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
1: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
2: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
1: जी हाँ,
2: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
1: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। ठीक है, साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
2: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
1: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
2: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास

0: व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

वो चांद मुस्काया बिचारे शर्माए, हमारा भी जीना मचलने लगे जो हाँ।

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें।

0: एसडी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बंबई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

जो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज़, ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

ಸವರಿಯ ಕೊಡಿ ಅಂಗನ್ನ ಹಾ.

0: अभी तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: महफिल।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन का 1 बज रहा है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ाने शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा।

0: श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में दो अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्केपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। IPL क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम। आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा उस साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भागदौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता

के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कह उठता है मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया साहिल उद्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है काश ये पेड़ पौधे भी बोलते हमसे कुछ कहते हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है ये बादल ये दीवानापन ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है कुदरत का प्यार जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं एक और श्रोता लिखती हैं ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

वहीदा रहमान जी पर फिल्म आया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है।

और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज़े दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं, क्या किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी। सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें, क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है, जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है, जब चांदनी रात हो।

मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा, तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं, आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे, तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
4: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
3: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
4: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण।

0: कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं, और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया

0: जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने

0: कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले पांच दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे इशारा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।

0: परत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

जो सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने, लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: रे बाबा मामा।

मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से। और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेल्हारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इस गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: घर बैठते हैं खिड़की के पास, वहाँ क्यों? अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
1: हाँ बिटिया,
0: हमारी टाइम यही देने लिए ना?
1: लाई है बिटिया,
0: चल बैठ सुन।
2: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
3: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
2: कहाँ कहाँ? ओहो जूड़ा, अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: वो दिन तू
2: कहाँ?
0: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल हैं।
2: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन सुमी वो देख, वो देख सुमन देखो
2: कहाँ।
0: अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
2: सच में
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
2: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
0: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से, न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
2: है। क्यों नहीं, अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
2: गरम गरम खिला रही हो।
0: हाँ तो फ्रेंड मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
1: चंदन
0: वैसे ये भी चंदन जैसी है।
1: हाँ,
0: पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
2: रीमा तू नहीं सुधरेगी।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
2: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
2: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र कर

0: नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आँखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन है वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी समीर?
0: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय
2: बाय
3: बाय बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन? यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है। हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो। अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आगरे का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। और लड़के की बहन मंजू, वो तो बहुत ही प्यारी
3: है।
4: अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था।

0: चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
1: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमित सुमित देख तेरे बारात आ गई। सुमित मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं रीमा मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले। बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपने एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: अभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो नानी सुनो देखो अरे तार अब ताई आंटी दीजिए ना जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए। आइए भैया
2: तुम भी चलो
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: आइए भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी चाय पी लीजिए भैया, थक गई मैं।
2: आप लोग अरे
0: आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है,

0: कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी, वाह।
1: लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो।
2: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान, अब बहू का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कुमारी की चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, अब क्या होगा।
3: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
0: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ। तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे।
1: अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
2: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए इन्हें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो।
4: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
0: हूँ,
4: मैं पागल नहीं।
2: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
0: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो।
2: भैया को दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
0: क्या कह रही,
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
0: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
2: अच्छा।
0: भाभी राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
2: अच्छा बाबूजी।
0: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
2: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
4: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को, क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं। सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
2: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
4: तो फिर
2: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
4: ट्रेजेडी?
2: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गए, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
4: वहाँ ठीक रहते हैं?
2: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
4: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
2: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
4: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं।
2: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ, शायद बाबू जी आ गए हैं।
4: वाह बेटी, इतनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, चार पांच गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
3: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी, क्या हाल है भैया का?
5: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
3: हैं?
5: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
3: बाबूजी।
5: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
4: पाप क्या होगा बाबूजी?
5: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
6: जी बाबूजी।
5: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
3: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
5: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
3: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
5: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
3: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
5: मंजू, मंजू,
3: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
5: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो मुंह में आता है पक देती है।
3: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
5: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
3: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
5: ठीक।
7: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
8: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
7: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
8: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: चंदन साहब,
7: क्या बेटा?

0: छोड़ो छोड़ो मम्मी, मुझे छोड़ दो।
1: सो जा बेटा, क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
2: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
1: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई, इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ, मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा। चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
1: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
1: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुनी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
1: ठीक है,
2: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
1: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
2: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
1: धोखा? कैसा धोखा?
2: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
1: अच्छा,
2: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
1: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
2: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
1: क्या?
2: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
1: अच्छा,
2: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
1: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने मुझे बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
4: अंदर आ सकता हूं?
5: ओह आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
4: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
5: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
4: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
5: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
4: समाज समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: रमेश तलवार की एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993 फिल्म साहिबा

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड वन।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया।

0: और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूज़िक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा करता था
1: जी
0: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
1: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
0: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है, उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
2: Episode 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। 1 महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजर रही आँख से, तो मैं काफी चमागे चमा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता था।
0: काम बन जाता था।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से जो रखकर कोने में बैठा हो। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद, दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी

0: पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबान आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है। अच्छा है, प्ले तो बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंटम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में आप अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैं भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रेसलिंग करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जिया जी थ्रू आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता समय 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था। और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने, ठीक है। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पर हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोल रहे मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया।
और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शवाना की और वो, तो आप किसी और तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक ही है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
1: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई, परीक्षित थाने के संग आई थी, तो उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी प्रभार करते।
0: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
1: बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है, तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूं, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम।

गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ा करते, रास्ता मुश्किल हो तो क्या उद्देश्य नहीं बदला करते। हार या जीत दो ही तो औहदे हैं, पराजय की डर से कोशिश नहीं छोड़ा करते, कोशिश नहीं छोड़ा करते। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 MHz पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से, बात करते हैं राष्ट्रमंडल दिवस के कॉन्टेक्स्ट में। राष्ट्रमंडल दिवस का मेन उद्देश्य उन 56 देशों के बीच एकता, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। दोस्तों, भारत सहित कुछ देशों में इसे 24 मई को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन के इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो 24 मई को 1958 तक एम्पायर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। इस दिन की शुरुआत विक्टोरिया की याद में की गई, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इसके बाद 1958 में फ्रांस तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलते हुए राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, तो दोस्तों वर्तमान में इसमें 56 स्वतंत्र देश शामिल हैं। सदस्यता की शर्तों के रूप में इस संगठन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश होना अनिवार्य है। साथ ही राष्ट्रमंडल के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों, का इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी जो देश हैं उन देशों के बीच स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को बनाए रखना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस मंच के द्वारा सदस्य राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और लैंगिक समानता जैसे वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए एकजुट करना होता है। इसके जरिए राष्ट्रमंडल देशों के युवाओं और संस्कृतियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। भारत इस संगठन का एक प्रमुख और सक्रिय सदस्य है। यद्यपि भारत एक गणराज्य है, फिर भी वह स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सहयोग का संदेश देना इस प्रकार की भूमिका के साथ काम भी कर रहा है। ये तो बात हुई आज के दिन विशेष की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्विक खेल और कूटनीति में भारत की भूमिका की, जो लगातार मजबूत हो रही है। खेल अब विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जहां खेलो भारत राष्ट्रीय खेल नीति जैसी पहलों के माध्यम से भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। वैश्विक खेल और कूटनीति के परिदृश्य में भारत की जो स्थिति है और उसके प्रभाव हम अलग अलग महत्वपूर्ण पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सॉफ्ट पावर का उपयोग वैश्विक स्तर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए कर रहा है, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज जैसे खेलों में भारत की जो उपलब्धियां हैं उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान तो बढ़ाया ही है। इसके साथ ही दोस्तों, योग और पारंपरिक खेलों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना कूटनीति का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है। भारत विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहा है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। भारत 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दिशा में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह न केवल भारत की खेल क्षमता को प्रदर्शित करता है, इसके साथ ही ये उसकी कूटनीतिक सोच को भी स्थापित करता है। पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन वैश्विक खेल कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित होता है। ये समावेशिता कड़ी मेहनत और मानवीय क्षमता का संदेश देता है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर भारत की एक मजबूत और संवेदनशील छवि हमारे सामने बनती है और हम सब इसी के पार्ट हैं। अन्य देशों के साथ खेल आदान प्रदान हो या प्रशिक्षण कार्यक्रम, कूटनीतिक संबंधों को सुधारने के अनौपचारिक माध्यम के रूप में भी कार्य किए जा रहे हैं। यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने में भी मदद करते हैं। इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से ही भारत क्रिकेट केंद्रित छवि से आगे बढ़कर बहुविषयक वैश्विक खेल महाशक्ति बनने की राह पर भी अग्रसर है। खेल अब भारत की विदेश नीति का एक नया और प्रभावी स्तंभ भी बन गए हैं। और दोस्तों, निश्चित रूप से खेल हमारी शारीरिक, मानसिक, हम यूँ कहें डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी पहलू है और हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक एज के पड़ाव में भी ये शामिल होना आज की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज समय समय पर चलाई जाने वाली योजनाएं भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो रही है। अब हम यहाँ सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, हम बात कर रहे थे वैश्विक खेल और कूटनीति में भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरने की। भारत खेलों का उपयोग अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से कर रहा है। भारत 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर मजबूत दावा भी पेश कर रहा है। ये भारत की वैश्विक छवि, बुनियादी ढांचे और आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा जरिया होगा। भारत ने हाल के वर्षों में ICC क्रिकेट विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और वैश्विक शतरंज ओलंपियाड जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी करके अपनी आयोजनक क्षमता को साबित भी किया है। इसके साथ ही हमेशा पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए क्रिकेट का सहारा भी लिया गया है। चाय कूटनीति की तरह क्रिकेट कूटनीति ने भी कई बार तनावपूर्ण माहौल को शांत करने में मदद की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे प्रभावशाली क्रिकेट बोर्ड है। वैश्विक क्रिकेट के फैसले हो या ICC की नीतियां, उनमें भारत की बात को टाला नहीं जा सकता। अगर हम बात करें टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के बाद जो रिजल्ट और जो रुतबा इसका सामने आया है उसकी, तो भारत केवल एक क्रिकेट प्रेमी देश ही नहीं रहा। भाला फेंक, बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी हो या शतरंज, भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। भारत ने योग के साथ साथ कबड्डी और खो खो जैसे अपने पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए जो कूटनीतिक रूप से अपना हिस्सा हासिल किया है, वो वास्तव में काबिलियत तारीफ है। इसके साथ ही अपने पड़ोसी देशों जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव के खिलाड़ियों को भारत में अभ्यास करने के लिए स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएं भी देते रहने के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो पड़ोसी पहले की नीति का भी हिस्सा माना गया है। इसके साथ ही खेल कूटनीति का एक बहुत बड़ा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों जैसे कि IOC, फीफा या विभिन्न महासंघों के प्रशासनिक बोर्डों में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाना भी रहा है, ताकि वैश्विक खेल नीतियों को तय करने में भारत की सीधी भूमिका बनाई जा सके। इसी प्रकार के रोल्स हमें निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे द्वारा भी स्थानीय स्तरों पर जो प्रयास हो सकते हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित

की जानी चाहिए ताकि जो रिजल्ट हैं वो वास्तव में बड़े स्तर पर देखने को मिले। ये तो बात हुई हमारे खेल और हमारे देश की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

है जिसके जरिए व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को दूसरों के सामने स्पष्ट, प्रभावी और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है। ये केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि सही टोन, हाव भाव और सुनने वालों के अनुसार भाषा का उपयोग करने की क्षमता भी है। निश्चित रूप से आप जो भी कहें वह सुनने वाले को आसानी से समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही शब्दों को सही और शुद्ध उच्चारण आपके आत्मविश्वास को दिखाता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका प्रोनाउंसिएशन। बोलते समय वाक्यों के बीच में बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके प्रवाह को दर्शाता है। इसके साथ ही अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, महत्वपूर्ण बातों पर जोर देने के लिए आवाज़ थोड़ी भारी या ऊंची करना आपके पिच को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही बातचीत के दौरान हाथों के इशारे और चेहरे के एक्सप्रेशन आपके शब्दों में जान यानी कि सजीवता डालते हैं, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। इसके साथ ही हम किस प्रकार से जो बोलने का कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल है उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं इसकी बात करें तो निश्चित रूप से हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने से जो हमारी शारीरिक भाषा जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो उसके साथ ही हमारा आत्मविश्वास सुधरता है। इसके साथ ही किसी किताब या लेख को जोर जोर से पढ़ने से शब्दों का उच्चारण हम सही कर पाते हैं और उनको जान भी पाते हैं कि हमारे द्वारा कहाँ कहाँ गलतियाँ की गई है। इसके अलावा हमें अपनी आवाज़ को फ़ोन में रिकॉर्ड करके सुनने से भी जो हमारी कमियाँ हैं जैसे कि जल्दी बोलना या आवाज़ का धीमा होना या कहीं भी कोई गलती होना उसका हम आसानी से स्वयं पता लगा सकते हैं और आत्मविश्लेषण द्वारा उसको सुधार के प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक अच्छा वक्ता बनने के लिए दूसरों को ध्यान से सुनना भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स के दौरान या फिर अलग अलग प्रकार के सेमिनार्स में हमें सुनने की जो आदत है उसको भी डेवलप करना होगा ताकि हम अच्छे से उन चीज़ों को सुनकर संग्रहित कर सकें और उसके साथ जब हमारी बारी आए तब हम बोलने के लिए उन शब्दों को, उन कुशलताओं को काम में ले सकें। इसके अलावा हम बात करें इसके महत्व की तो ये व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन यानी कि अपने करियर में सफलता की कुंजी कहा जा सकता है और आज के समय में जब ये क्षेत्र बहुत वास्ट और बड़ा बनता हुआ हमें नज़र आता है तो निश्चित रूप से जो हमारे अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हैं उनमें ये कुशलता बहुत बड़ा रोल अदा करती है और आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए भी तैयार है। अगर हम उस प्रकार से स्किल्ड हों तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सारे अवसर खड़े हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार, इंटरव्यू जो आज हर एक प्रतियोगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज कहा जा सकता है उसकी बात हो या ऑफिस मीटिंग्स, सामाजिक कार्यक्रमों की बात हो, अपनी बात सही ढंग से रखने में ये हमारी बहुत बड़ी मदद करता है, हमारा बोलने का जो तरीका है वो। और उसके अलावा हम किसी भी प्रकार की नेतृत्व क्षमता में अगर हैं तो हमें अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत करना, उस प्रभावी लहजे में प्रस्तुत करना कि हमारे जो जूनियर्स हैं उन बातों को अच्छे से समझते हुए उन बातों को मानने के लिए मजबूर हों, साथ ही अपना भी उसी प्रकार का वो अपने अंदर डेवलप कर सके कि आने वाले समय में जब वो उस स्टेज पर हो तो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को आदर्श रूप में मानते हुए आगे बढ़ सके। इस प्रकार की निश्चित रूप से जो स्किल्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी कारगर साबित हो सकती है अगर हम उनको अच्छे से सीखते हुए जीवन में अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हुई आज की बोलने की कौशल यानी कि स्पीकिंग स्किल्स की। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के समय में जो भीषण गर्मी का दौर चल रहा है उसमें हमें निश्चित रूप से पर्यावरण का सोचते हुए जो हमारे पंछी हैं उनको परिंदों में पानी डालना चाहिए और उनको इस जो हीट वेव्स है उसके जो नुकसान हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचाते हुए काफ़ी हद तक अपना रोल एक मानवीयता के रूप में अदा करना चाहिए। इसी प्रकार के संकल्प के साथ आज का युवाणी बस यहीं तक। आपकी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम की 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत हैं बालवाड़ी कार्यक्रम।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मेरा जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही मस्त होंगे क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही है। हमें तो स्कूल से छुट्टी मिलती है और हम मस्त है ना बच्चों। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, बहुत ही यूँ कहें कि बहुत ही खुशी से झूमती हूँ क्योंकि अभी चल रही है अपनी छुट्टियाँ है ना बच्चों। खेलने के, कूदने के, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने का खूब समय हमें मिल जाता है ना। और एक दूसरे से बात करनी होती है तो तुरंत हम लोग फ़ोन उठाया और बात भी ननियाल ददियाल या और भी कोई फ्रेंड्स के वहाँ तो हम बात कर लेते हैं। और अक्सर छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स की याद आती है ना बच्चों, है ना, आती है ना। तो भाई मुझे भी अपने फ्रेंड्स की याद आती है तो तुरंत मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और अपनी फ्रेंड से बातें कर लेती हूँ। तो आप भी अपने फ्रेंड से बातें करते होंगे है ना, क्योंकि ये सुविधा हमें उपलब्ध है। वाकई सही है बच्चों। हम देखते हैं कि अभी के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है ना, और हम बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही मीडिया उपकरणों और इंटरनेट की पहुंच में तेजी से वृद्धि हुई है ना बच्चों। इससे ना किशोर, ना बड़े, ना बच्चे, ना ही बुजुर्ग, कोई भी अछूते नहीं हैं है ना। सभी लोग इंटरनेट से जुड़कर सोशल मीडिया और मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब का उपयोग करते रहते हैं। लॉकडाउन में स्कूलों की पढ़ाई भी बच्चों इसी उपकरण से होती थी और अन्य गतिविधियां भी जो है ना मीडिया के माध्यम से ही हुआ करती थी। भाई ये एक बात कहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, यूँ कहें कि लाभदायक उपकरण है, लेकिन कभी कभी पता है ये इसका ज़्यादा उपयोग करने से ये नुकसान भी कर देता है। तो हमें चाहिए कि इसके लाभ को ध्यान रखते हुए नुकसान को भी ध्यान रखें है ना। भाई ये तो बात सही है कि हमारे लिए सोशल मीडिया जो है ना इसका रिश्ता एक दोधारी तलवार की तरह है, जहाँ हमें सीखने सिखाने और रचनात्मकता दिखाने और दूर बैठे दोस्तों से परिवार के सदस्यों से जुड़ने में मदद करता है ना ये मीडिया, वही इसका दुरुपयोग भी होता है। अगर हम ज़्यादा प्रयोग कर लेंगे तो इसके दुष्प्रभाव जो है ना वो देखने को मिलेंगे। भाई हम बात करते हैं, भाई इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम घर पे बैठ के हमारा होमवर्क भी कर सकते हैं, किसी और से बात भी कर सकते हैं, अन्य गतिविधियाँ हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके दुष्प्रभाव आपको पता है? नहीं पता है? चलो आज इसी पे अपन बात करते हैं। देखिए अगर हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे ना बच्चों तो हम मानसिक तनाव हमें हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना भाई आज तो टेंशन हो रहा है, टेंशन नहीं वो उसको मानसिक तनाव होगा दिन भर अगर हम कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे या मोबाइल लेके बैठेंगे, रील देखते रहेंगे या और भी कोई चीज़ें उसमें देखते रहेंगे तो तनाव तो होगा ना बच्चों। साइबर बुलिंग और एकाग्रता में कमी, ये और दूसरी बात है लत लग जाना, भाई आदत सी लग जाती, नशा सा हो जाता है।

छोटे बच्चे को पता है, मैंने बहुत सी बार ऐसा देखा है कि भाई बच्चा अगर कोई खाना नहीं खा रहा है घर के अंदर, तो उसको तुरंत मोबाइल पकड़ा देंगे हाथ में और उसको एक एक ग्रास तोड़ के उसको मुंह में देते रहेंगे और बच्चा आराम से खाता रहेगा। जैसे ही मोबाइल बच्चे के हाथ से छीना और बच्चा तुरंत रोने लग जाएगा। तो ये एक तरह की लत हो जाती है बच्चों। तो हमें जहाँ तक हो सकता है मोबाइल से हम दूर ही रहें, और मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे तो इसके जो दुष्प्रभाव है वो भी हमें झेलना पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सके बच्चों, जितना हमारा काम है उतना ही काम करें, फालतू की चीज़ें हमें इसमें नहीं देखनी है, नहीं इसका ज़्यादा उपयोग करना है ना। हाँ, मानते हैं लाभ है इसमें, जैसे ज्ञान में वृद्धि होती है ना, और सामाजिक जुड़ाव भी हमारा होता है इसमें, लेकिन नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा, है ना। और इसके अलावा क्या होता है बच्चों, बहुत सी बार क्या होता है कि गलत जानकारी भी हमें इससे मोबाइल से मिल जाती है। कम उम्र के बच्चों के साथ में अगर मोबाइल दे दिया जाए या कहीं से उनको उपलब्ध हो जाता है, चोरी छुपके से देख लो, है ना, या कभी मम्मी इधर उधर गई है, हमने मोबाइल ले लिया उनका, तो हमें चाहिए कि कोई भी ऐसी वैसी चीज़ हम उसमें मोबाइल में, जो भी गलत चीज़ें हमें सिखा रही है, चोरी करना, अपराध करना, ये चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। और यहाँ जो ये कार्यक्रम पेरेंट्स सुन रहे, माता पिता, उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की उम्र का ख्याल रखते हुए ही उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवाएं। बच्चा अगर 13 साल से छोटा है तो हमें उसे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए। 13 साल से अगर बड़ा है और हम अगर उसको मोबाइल उपलब्ध करवा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो तय कर दें कि भाई इतने टाइम तक ही आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, उनसे लगातार बातचीत करते रहें बच्चों से, यानी भी आप किससे बात कर रहे हो, कौन सा फ्रेंड है आपका, है ना, या ऑनलाइन कौन सा आपका फ्रेंड बना है, ये इन चीज़ों से आप जो है वाकिफ रहें, आप उनसे बातचीत करते रहें ताकि आपको इनकी जानकारी भी रहे। और प्राइवेसी और मॉनिटरिंग, बच्चों की फ्रेंड लिस्ट और ऑनलाइन दोस्तों पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। भैया हम ठीक है, स्कूल से हमें होमवर्क मिला है, मोबाइल में देख के हमें वो मोबाइल वो काम करना है, तो मैं माता पिता से कहना चाहूँगी कि वो बैठ कर उन्हें काम करवाएं, बच्चों को फ्री ना छोड़े मोबाइल पे, वरना वो पढ़ेंगे तो नहीं, या यूँ कहूँ कि जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे लेकिन दूसरी चीज़ें उसमें देखेंगे। तो हमें थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, तभी जाकर बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे और आगे जाकर वो एक अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे। भाई मीडिया का ज़माना है, ज़माने के साथ तो हमें चलना है, समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे बच्चों। लेकिन हमें कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रख के हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, है ना बच्चों। ये हुई बातचीत, और बातचीत के साथ ही हम चलते हैं मनोरंजन की ओर, और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत, क्यों कि अभी बच्चों गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में हमें कितनी ही बार ऐसा लगता है कि बस बारिश हो जाए और हम उसमें खेले कूदें, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है बच्चों। तो चलो चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, मैं भी गुनगुनाती हूँ, आप भी गुनगुनाइए।

हाँ देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्यारा सा गीत था ना भाई, बहुत अच्छा था कि जब बरसात होती है और हम उसमें नाचते हैं झूमते हैं, मन भी बड़ा प्रसन्न होता है और प्रकृति भी यूँ कहें कि बहुत ही यूँ खिल जाती है बरसात आने के बाद, है ना। इतनी गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो ये बिल्कुल होता ही है कि खुशहाली छा जाती है चारों तरफ। यार इसके पता है बच्चों, अभी इन छुट्टियों में हम प्लान करते हैं भाई, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, घूमने का प्लान करते हैं ना भाई। मैं भी प्लान कर रही हूँ कि मैं भी जो छुट्टियाँ हैं ना उसमें कहीं घूमने जाएंगे, और मैं तो यही कहूँगी आप भी जब भी जाते हो घूमने तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक बात बताती हूँ बच्चों आपको, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, ऐसा लगता है ना कि पेड़ पौधे और धरती ये सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा ये सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं लगता है ना, और वो सीन बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन मन में ये विचार आता है बच्चों कि क्या वास्तव में धरती घूमती है, आता है ना ये दिमाग में विचार आ जाता है। तो मैं बताऊंगी बच्चों आपको कि हाँ बिल्कुल बच्चों, वास्तव में धरती घूमती है ना, ये दो तरह से घूमती है। पहला ये कि अपनी धुरी पर लट्टू की तरह ये तरह, और दूसरा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। इसी के कारण बच्चों दिन रात और मौसम बदलते हैं। बच्चों पृथ्वी अपनी काल्पनिक धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इससे ही दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाती है, और एक चक्र पूरा करने में, सूर्य के चारों ओर चक्र पूरा करने में 365 दिन लगते हैं बच्चों, और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इससे ही हम कहते हैं कि अलग अलग मौसम, जैसे सर्दी गर्मी बरसात है ना, 6 तरह के मौसम होते हैं बच्चों, लेकिन मुख्य रूप से 3, सर्दी गर्मी बरसात, हेमंत बसंत शिशिर, ये उनके साथ ही अटैच हो जाते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से 3 मौसम हम कह सकते हैं। तो ये मौसम बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्र लगाती है तो ये मौसम का बदलाव होता है ना बच्चों। अभी चल रहा है गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी के मौसम में हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि सुबह शाम ही हम घर से बाहर खेलने के लिए निकलें, दिन में बिल्कुल भी खेलने के लिए बाहर ना निकलें, क्यों कि लू चल रही है, कहीं हम बीमार ना हो जाएं, है ना बच्चों। दिन में मैं यही कहूंगी आपको, आप अपने जो भी परिवार में बच्चे हैं या आसपास के जो बच्चे हैं, एक जगह आप अंदर घर में ही आप तय कर लें कि वो कमरा हमारे खेलने का है, वहां आप बैठें, और इंडोर गेम जो है ना वो सारे गेम आप खेल सकते हैं वहां बैठ के, है ना। बस मैं यही कहूंगी कि आप मेरी बात मानेंगे बच्चों, और अपनी दिनचर्या अच्छे से आप नियत करेंगे ताकि हम बीमार ना पड़ें और गर्मियों की छुट्टियों को बड़ा एंजॉय कर सकें, बहुत आनंद उठा सकें, है ना बच्चों। और इसके साथ ही हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, सुनेंगे आप, सुनिए।

देखिए बच्चों, कितना प्यारा गीत था ना ये, अच्छा लगा ना ये गीत। भाई हम अंदर कमरे में बैठ के दिन में इस तरह से खेल भी खेल सकते हैं, है ना। तो इससे हमारा क्या होगा कि बच्चों के साथ मेल मिलाप भी बढ़ेगा और हमें नई नई जानकारी, नए नए खेल, है ना, ये भी खेलने को मिलेंगे। देखिए बच्चों, इसके खेल के साथ साथ कभी कभी इच्छा होती है ना कि कहानी भी हम सुने। जब भी दादी नानी के पास बैठने का मौका मिलता है तो हमारा मन करता है भाई इनसे हम कहानी सुने। तो बच्चों आज सुनते हैं कि प्यारी सी कहानी, सुनेंगे आप? बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आप एक छोटी सी कहानी। पहले आप मुझे बताइए बच्चों कि बुद्धि बड़ी या ताकत? ताकत बड़ी होती है ना, है ना? नहीं, ताकत बड़ी नहीं होती है, बुद्धि बड़ी होती है बच्चों, है ना। कहते हैं ना कि भाई देखो, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है ना। एक बार क्या होता है बच्चों, एक जंगल में एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर बंदर रहता है। वो बंदर बड़ा चुलबुला होता है, कभी इधर उधर फुदकता रहता है। और उसी पेड़ के नीचे एक जो है भैंस बैठी हुई होती है। तो एक बार उन दोनों में बातचीत होती है। वो भैंस उसको डराती है बंदर को कि क्या दिन भर इधर उधर कूदता रहता है और तेरे में कुछ ताकत तो है नहीं और खाली बस इधर उधर घूमता रहता है ना, कोई तुझे मार देगा या कोई तुझे तेरा शिकार कर लेगा। और भैंस बोलती है कि इस जंगल की जो सबसे ताकतवर है ना, वो मैं ही हूँ सबसे ताकतवर। बोलती है अच्छा? बोले हाँ। कि नहीं, वो बोलता है नहीं, मेरे में बुद्धि है और बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। दोनों में शर्त लगती है। चलो ठीक है भाई। फिर बच्चों क्या होता है कि शर्त ये होती है कि नदी के उस पार एक आम का बड़ा सारा टोकरा रखा होता है, उस टोकरे को नदी के इस पार लाना होता है, यानी पेड़ के पास जहां उनका निवास होता है। ठीक है, दोनों में शर्त हो जाती है बच्चों। फिर क्या होता है कि भैंस पानी में होती हुई नदी के उस पार जाती है और वो टोकरा जो है, वहां पे दो टोकरे रखे होते हैं ना, एक उसको लाना है एक उसको लाना है। भैंस जाती है पानी में होती हुई और उस टोकरे को अपने कंधे पर डालकर और लेके आती है। तो टोकरे में वजन होता है और भैंस खुद भारी होती है, तो वो कीचड़ में धीरे धीरे धीरे दलदल में फंसती हुई फंसती हुई फंसती हुई धीरे धीरे चलती रहती है। इधर क्या होता है बच्चों, वो बंदर जाता है उधर, एक लकड़ी का गट्टर लेता है, उसके ऊपर चढ़ के तुरंत नदी पार कर लेता है और उसी गट्टर से वो उसको बांध लेता है आम के टोकरे को और इधर ले आता है। तो अब बताइए बच्चों कि अक्ल बड़ी या भैंस, है ना, ये कहावत है ना, सुनी आपने कहावत? तो देखिए भाई, मैं तो ये कहूंगी अक्ल बड़ी है। बंदर इतना छोटा होने के बावजूद बिना किसी परेशानी के टोकरे को इधर ले आता है और भैंस इतनी बड़ी और ताकतवर होने के बावजूद भी कितनी परेशानी उसको झेलनी पड़ती है ना बच्चों। तो हमें चाहिए कि हम कभी कभी ताकत की जगह बुद्धि से काम लें, है ना। बड़ी से बड़ी परेशानी बच्चों बुद्धि से, यूं कहें कि उसका समाधान हो सकता है परेशानी का, है ना। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों आगे चलते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक स्तंभ रखते हैं किले का, कि भाई हर बार हम आपको नए नए किले की जानकारी देते हैं। बच्चों आज बात करेंगे भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग, यानी वहां का किला। बच्चों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में ये रावत भाटा के पास में पड़ता है ये दुर्ग, और ये चंबल और बामणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये एक ऐतिहासिक जल दुर्ग है बच्चों। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता

अभेद्य बनावट और इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका निर्माण व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भेंसा साहा और रोड़ा चारण द्वारा करवाया गया था। बाद में 1741 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसे सलुम्बर के रावत लाल सिंह को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया। है ना बच्चों, देखिए आप, इसकी बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ की प्राकृतिक सुरक्षा के सुरक्षा तो है ही और प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत है। ये किला तीन तरफ से चंबल और बामणी नदियों के गहरे पानी से घिरा हुआ है, जो इसे एक बेहतरीन प्राकृतिक दुर्ग भी बनाता है। और यहाँ पे एक हेरिटेज होटल भी बनी हुई है बच्चों, है ना। वर्तमान में इसे एक यहाँ पे एक हेरिटेज होटल का रूप दे दिया गया है इसको, इस दुर्ग को। और यह एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हरे भरे जंगल, जैव विविधता के लिए बहुत सारे यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ रावत भाटा से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रावत भाटा से इसकी दूरी 7 किलोमीटर की दूरी है, तो हम बस से, कार से या अपना कोई जो भी व्हीकल हो उससे भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इधर हम चाहें तो कोटा से भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोटा से इसकी दूरी 50 से 60 किलोमीटर की पड़ती है बच्चों। तो हम चाहें तो अपना जो भी व्हीकल हो हमारे पास, टैक्सी, बस या ट्रेन, जो भी सुविधा है, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बच्चों, जब भी आपको मौका मिले ना, आप यहाँ की विजिट जरूर करिएगा। यहाँ आप घूमने जाइएगा और आप देखिएगा इसकी प्राकृतिक सुंदरता, है ना बच्चों। देखो, हमने ये बहुत सारी बातचीत कर ली, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको ये बताना चाहूँगी बात बच्चों, कि मौसम चल रहा है गर्मी का। गर्मी के मौसम में हमें चाहिए कि हमारा खान पान और हमारा रहन सहन मौसम के अनुसार ही हमें करना चाहिए। गर्मी के मौसम में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी काम है कि निकलना ही पड़ेगा, तो मैं कहूँगी सिर पे कपड़ा ढक के फिर आप निकलें। और खान पान की जब बात करते हैं ना बच्चों, तो पेय पदार्थ ज़्यादा लें। पेय पदार्थ का मतलब ये नहीं कि आप बाजार गए और शीत आप पेय पदार्थ खरीद के लिए आए। नहीं बच्चों, हमारे घर में भी छाछ, दूध, दही, इनका आप सेवन करें। और भोजन के साथ आप हरी ककड़ी, है ना, प्याज, इनका आप प्रयोग करें। सलाद के रूप में आप इनको लें, ताकि हमें किसी तरह की लू ना लगे, है ना। तो बच्चों, ये हुई हमारे रहन सहन, खान पान और पहनने। कपड़े की बात करते हैं बच्चों, तो हमें टाइट टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनने। हमें जो हमारे कपड़े लूज़ लूज़ हो, यानी ढीले ढीले कपड़े हो, सूती कपड़े हो, वो कपड़े हमें पहनने चाहिए। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपनी मम्मी जो अपने को पहनने के लिए कपड़ा दे रही है ना, वो हमें तुरंत पहन लेने चाहिए। इसमें आनाकानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा, मैं पैंट, बहुत से बच्चों की आदत होती है वो ये कहें कि नेकर अगर उनको पहनाएंगे तो बच्चे नहीं पहनते हैं, और वो पैंट पहनने के लिए ज़िद्दी करते हैं बच्चों। तो इस मौसम में हमें पैंट नहीं पहननी, क्योंकि बहुत सी बार इचिंग भी हो जाती है। टाइट टाइट कपड़े अगर हम पहनते हैं, या रेशमी कपड़े पहनते हैं, या और भी कोई किसी तरह का कपड़ा पहनते हैं ना, तो इचिंग हो जाती है बच्चों। तो हमें सूती कपड़ा पहनना है, ढीले ढीले कपड़े पहनने, खान पान में हमें पेय पदार्थ लेने हैं, और लिक्विड ज़्यादा खाना है, है ना बच्चों। ये इन छोटी छोटी छोटी चीज़ों की जो है हमें थोड़ी यूँ कहें कि इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, इन पे थोड़ा सा गौर करना है और वही काम करना है जो अपने पेरेंट्स हमें कह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ बच्चों, कि छुट्टियाँ हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर ही खेलते रहें। थोड़ी सी एक घंटा हमें बैठ के हमारी स्टडी भी कर लेनी चाहिए, या अगली क्लास में हम जा रहे हैं तो उस क्लास की हमें बुक्स तो हमने खरीद ही ली, क्योंकि स्कूल चालू हो चुकी है अप्रैल में भी, है ना। तो हम और स्कूल खुलते ही बच्चों एग्ज़ाम्स भी है, टेस्ट भी आते हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुचान। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट जो है कमज़ोर है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने का ये अच्छा अवसर है। बच्चों, बातें तो और भी होती रहेगी, लेकिन घड़ी जो है हमारे यही कार्यक्रम को समाप्ति की ओर इशारा कर रही है। तो करते हैं बच्चों, जय हिंद।

0: रदहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
3: जात पात

किशोर कुमार की आवाज़ में ज़िंदगी ज़िंदगी फ़िल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए, ज़िंदगी और मौत फ़िल्म से आवाज़ महेंद्र कपूर की।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में जिंदगी और मौत फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में, ज़मीर फिल्म से।

किशोर कुमार की आवाज़ में ज़मीर फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: कार्यक्रम माटी के स्वर जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है जो देश को रॉकेट्स लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय

0: ये खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में जीएटीसी वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई, इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों

0: की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धम्बोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। TAD उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माय खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घनकरा हल्का माय करड़ी गर्मी और लू रो असर बण्योड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में कालेऊ जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन का ने महत्व माना जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सरुवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों महारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
3: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
2: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ई नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाण वाली 32 सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी जा है। मुख्यमंत्री राज्य बजट

0: 2026-27 रे तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारे में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जाने वाली सब्सिडी बढ़ावण प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला, इणु उत्पादन बूतो बढ़न रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इन रे साथ ही स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देवण सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में दो महत्व बदलाव करी जा है। इन रे तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएला, साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन ही वह सकेला। उद्योग महकमा कानियो काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जाएला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवण रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ने देखो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वह आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में वी बतल में आथुणी एशिया संकट पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इन रे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है। वणा कहो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन रा चोखा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजनाओं देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथ सामरिक और माली हिफाजत में महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेटों लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का में अगाड़ी बढ़ावण में मदद करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट में रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वना एहलकारा ने निर्देश दिया कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश में नोडल एहलकार नियुक्त कराया जावे जिनो काम में तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया जठे वना हमीरगढ़ हवाई पट्टी रो जायजो लियो। इन रे पछे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर में कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नवीसा ने बतल में भीलवाड़ा में कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामे राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वणा कहो के इन लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और मापरी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र GATC री भूमिका रो पसारो करेला। इस सारू साल 2013 रा कायदा माय बदलाव करी जियो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माय GATC वजन और मापरी 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माय पेट्रोल डीजल CNG LPG LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच ही भेली है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो और तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज हुआ एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधि पूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कयो के विश्वविद्यालय कानियों थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा एकात्म मानववाद अंत्योदय ग्राम विकास सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मोमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़ियां नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ है ई मुहिम माए है सो लियो। ई मौके जयपुर रा SMS स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़ जैसलमेर राजसमंद कोटपुतली बहरोड सलूम्बर बालोतरा झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहन रो संदेश दिरिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इनो जोड़ ने योगा अभ्यास जुम्बा रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। और अब मौसम प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनियोड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालनो लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहनो लोगों रा काम काज माथे असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीस बतायो के वठे लोग करडी गर्मियों बचन सारू कई जतन कर रिया है।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद BSF के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर।
0: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राज्य रा घन करा हल्का माय मौसम साफ रेवण एर धूल भरी हवा चालन तापमान माय 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वारी आस जताई है। 26-27 महीने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माय 32 तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठे 28-29 मयूं एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ असरों प्रदेश रा कुछ हल्का माय आंधी और कठे कठे बिरखा होण री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आप रा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई तई आप राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम री मार्फत ही आप विचार भेज सको हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो। प्रदेश माए काल्यों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माए खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। अर प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करडी गर्मी अर लू रो असर बनियोड़ो है। आपता कुछ दिन राहत रा आसार नी। नेंडर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम की 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: आवेदन आप कर सको। तो किसान भाई आ चीज़ रो आपने पूरो ध्यान रखना कि भाई आपने यू आवेदन क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये चीज़ रो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपने कहीं कहीं फ़ायदा है और की तरीका हूँ आपने यो फ़ायदा मिल रहा है। तो किसान भाई आ चीज़ रो आपने पूरा ध्यान रख के थका यो आपने फ़ायदा उठाना है। तो किसान भाई तो हुई बात चीता, अब लेवा ब्रेक।
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: किसान भाई देखो, ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद अब आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो इंसान ने बीमा तो कराना ही चाहिए। देखो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चाहे आप के शरीर का भी, कई लोग बीमा करा हुआ है, तो आप के शरीर का भी आप बीमा करा सको। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आप के बिजनेस को भी बीमा करा सको। कोई छोटो मोटो दुकानदार या धंधा कर रहे हो, बीरो भी बीमा करा सको। मान लो कोई हानि होगी, चोरी होगी, बीरो भी हुआ है ध्यान, आप गाड़ियाँ घोड़ा गाड़ियाँ हुआ है, बैंक को भी आप मोटरसाइकिल है, चाहे फोर व्हीलर गाड़ी है, चाहे ट्रैक्टर है, बीरो भी आप बीमा कराएं कराएं। तो ये पाँच सेंग चीज़ों का अपन ध्यान रखते थका, बीमा इमा तो कराना ही चाहिए। और किसान में देखो, गांव कोट जाए कराए बटे कोई भाई सेण मिले बीमा आप हताएं कराएं। तो आज ग्राम सारणवास जाने को मौको मिलियो, बटे फरीद खान जी जिन्हें खन्ना साहब नाम जाने कराए, बा मैंने मिल लिया बीमा मैं कराई हताड़िया। तो बा अपने खेती के बारे में कई तरह की चौकी चौकी जानकारी दी कि भाई फसल चक्र अपनाओ, देसी तरीकों खेती करो, खेत के अंदर जो आप जो बीज बो तो घर का बीज मोटा सिट्टा छांट रखो बा लियो। बीरे अलावा कई और बातें भी करी। तो किसान मैं सुना आ बातचीत
5: भाई, समय समय पर कोई ना कोई जानकार बातचीत कर रहे हैं। आज मांगे साहब में बुजुर्ग किसान है। नमस्कार साहब।
6: हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार।
5: कहीं से कहीं नाम आप रो?
6: मेरा नाम है फरीद खान या खन्ना साहब, नाम पहचान है मैंने।
5: अच्छा, फरीद खान।
6: हाँ,
5: तो फरीद खान जी आप किस गाँव का?
6: सरणवास।
5: सरणवास। तो ये सरणवास तो रेतीलो गांव है।
6: हाँ रेतीलो गांव है,
5: है ना।
6: हाँ रेतीलो रेत है।
5: नागौर शहर कितने किलोमीटर है?
6: तीन चार किलोमीटर है।
5: चार किलोमीटर दूर है, बिल्कुल सा। दाणिया बसोड़ गांव है।
6: दाणिया बसोड़ गांव है।
5: कितनी दाणिया है?
6: दाणिया 500 खंड है।
5: 500 खंड है।
6: हाँ 500 खंड है।
5: अच्छा, अलग अलग दूर दूर है।
6: हाँ खेता खेता में आप रहे।
5: हाँ सही। तो बिजली पानी सही सुविधा?
6: सब सुविधा है।
5: सड़क उजड़ो है?
6: सड़क पानी तो मारे आदमी तो कम है, बट आगे आगे पानी है। मारे जुड़ो चलू करियो को टंकी पीनी देना हो।
5: अच्छा, टंकी पीवन को पानी?
6: हाँ पीवन को।
5: नेर आलो?
6: नेर आलो। मारे खेता दूर भी आयोड़ी है, चोरे दूर लेन हाल जोड़ियो को पानी फूके को मारे। अरे अरे बाटिया को चोरा है, बट खेल दे बटे टंकी रो जागा के टूटी है तुगो की उड़े पीने जाओ टंकी तो बढ़िया रहे।
5: देखो देखो कह कराना की भाई लार लागोड़ा रेवा तो सर सब काम हुआ सेंक्शन तो ही गई।
6: हाँ सेंक्शन
5: हो जाए, नेर को पानी भेजा है। यूं नल में पानी आवे है?
6: पानी कम आवे बटे मारे बट गुनिया बढ़ नहीं आवे अभी टंकी में।
5: तो नाडी तालाब का कहीं हाल है?
6: नाडी तालाब ठीक है, नाडी तालाब खुदे है।
5: अबार वो चल रहे हो के काम? नरेगालो
6: नरेगालो कहवे था चल रहे सही। हमारे द्वारा टांका पे बिनोड़ आया फिर लिखा सरकारी गवर्नमेंट खेता में टांका में पानी है।
5: अच्छा,
6: बड़ा बिनोड़ा है
5: वो सरकारी योजना के तहत जो बना हुआ। हाँ, फायदा।

0: पेड़ो तंग
1: फायदा उठा
0: कितने टैंकर को है
1: वो है 6-7 टैंकर को।
0: ओहो पछे पानी भी मैं बरसात ही भरो
1: बरसात बरसात को बरसात हो जाए तो पाई तान करोड़ो है अपना आप भरी जावे जरा भाई अब कुड्डा में कौन भी हरियो है घरे टांको है बड़ो भी मैं कुडानो पड़े भी पाई तान कौन
0: पीऊन को काम मिलो।
1: हाँ पीऊन का काम मिलो
0: सही बात है आपरी
1: गाँव तो उन काम में खारो पानी लेवा मैं मेरे को
0: अच्छा
1: सनवास को बेरो है सलूकन गांव है बट बेरो है भी बेरो को पानी ना उन दोनों बोले वहाँ और मैं जान बराने और मारे वो मीठो पानी करो
0: मीठो प्रसाद तो गांव की पहचान कहीं है
1: गांव की पहचान सनवास ही है बता
0: सनवास नाम हुई है।
1: हाँ
0: 500 धनिया है।
1: हाँ 500 धनिया
0: तो अरे मुख्य धंधो
1: मारे तो वो खेती बाड़ी और ये ज्यादा करते
0: खेती आप कितने बीघो है
1: मारे दोनों भाई भाई सिकला मारे बट 65 बीघा पड़नी है 20 बीघा आटे है लेकिन
0: अच्छा
1: 10-1 बीघा ढाणी करनी है
0: प्रगतिशील किसान हो। बरसात की खेती करो कि ट्यूबवेल है
1: बरसात ही करा सर
0: जमीन में पानी कोनी मीठो
1: मीठो पानी देला में तो खुद ही कौन था ट्यूबवेल
0: खुद ही कोनी खर्चो घणो आवे
1: खर्चो तो घणो कोनी आवे खुद ही कोनी वा छोरा बारे की उड़ाए रे एक मुल्ला ना है रो ठेकेदार है जो माऊ बुड्ढा पे हम काम हुए कोनी मैं काम करे भी पर हरदम में रहनो पड़े
0: ट्यूबवेल पे।
1: हाँ ट्यूबवेल रेणो मारे पानी जा रहे हैं ट्यूबवेल वो बार
0: मीठो पानी भी में
1: मीठो पानी है रहा जोरदार कागड़ियार सब फलियार रलियार सब
0: कबाड़ी सब फसला हुआ
1: है सब फसला
0: सब्जी और सब्जी अनाज दोनों है
1: सब्जी यहाँ पे ठेको हम दी हुए कोई नमालिया ने
0: अच्छा बढ़िया बात है
1: 30-35 बीघा जमीन दी है करे जोरदार मार्केट सब्जी सब है बट है
0: सब भाव है।
1: हाँ,
0: तो आप भी सब्जी अब्जी की बात होला बरसात के दिनों में भी
1: बरसात के दिनों में सब्जी हुई है फलिया टीन चार
0: है ना
1: अरे यहाँ मतलब भी नाउन नाल पानी हूँ थोड़ा थोड़ा कारा कर भाई उड़ा है जो
0: घर में खावन जो खावन जान को जाओ
1: जाओ
0: तो मिट्टी की थी मिट्टी
1: रेत है रेतीली
0: बालू।
1: हाँ बेलू
0: अच्छा इसमें सब फसल हुआ
1: सब फसल हो जाए मेरी माइन
0: यानी
1: सब फसल हो जाए
0: सब फसल हुआ ये तो बढ़िया बात है देखो होनी भी चाहिए देखो सब फसल हो जाओ तो बढ़िया बात है देखो फरीद खान जी के हर तरह की फसल ले सका ध्यान थे कहीं कहीं बाया करो
1: माने देखो मूंगोट बामार मूंग बामा बाजरी गवार चौंला
0: अच्छा चौंला भी
1: हाँ सब्जी खातर
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो चौंला की बजे माल फसल आप लेवा तो मेरी बिक्री कटे हुए बजे
1: बिक्री मंडी में बिके
0: मंडी में बिके चौंला बढ़िया भाव बिके
1: ठीक बिक जाए
0: यानी
1: हाँ सब्जी हुए तो सब्जी हुए भी फलियां बहुत जोरदार सब्जी हुए तो चौंले दो माए नाकाचरा बढ़िया रहे
0: कई जना तो अपा के एक वो ग्रीन हाउस बना हुआ है वो हरो रंग को पर्दो लगा लगू टेम्परेचर भी मैं सही राख रखू और भी मैं अंदर सब्जियां उगा हुआ अपन गाँव में कोई है
1: बिया कौन मारे
0: बिया कौन
1: बिया कौन माँ के यहाँ खुल रही है भाई उड़ी है मारा भाई रही है सब अन्नारा बोर
0: सब है ना
1: सब अन्नारा बोर है पपीता नींबू सब लगाए उड़ा पे
0: यानी कि बोर वगैरह सगले उगे पड़े
1: सब सेम बोर बार है
0: कुल मिला पाए मिट्टी बढ़िया है
1: मिट्टी बढ़िया सब हुआ है
0: तो आप भी ट्यूबवेल की मांग करो ट्यूबवेल लो
1: हाँ,
0: कोई पता लगाओ आपके कृषि विज्ञान केंद्र में कोई सब्सिडी मिलती हो तो सब्सिडी को फायदा उठाओ और ट्यूबवेल खुदो तो हर तरह की फसल लो अभी
1: अब ले माता
0: तो खाद बीज
1: खाद बीज तो माने तो खेती को ही है गाय भैंसिया बकरा बकरी है मैं तो भाई जो ले
0: खाद उठे घर की काम में
1: गोबर वाली
0: कई वो डाले नहीं डीएपी
1: कोई तो यूरिया ना क्या बरसात हुए ना खेत थोड़ थोड़ पानी भरोड़ देना
0: थोड़ी
1: थोड़ी अच्छा तो वापस चलते खेत ने थोड़ा कमजोर करे पते
0: नुकसान
1: करे हर साल नाकनी पड़े
0: हर साल
1: नीर माइन में 2 साल बाद नाक जा 2 साल नहीं नाका तो चल जाए
0: गोबर
1: वाली महंगे
0: साहब बढ़िया गोबर वाली रहे
1: गोबर वाली बढ़िया रहे
0: गोबर वाली बढ़िया रहे बीज बजे कटो लो
1: बीज तो मैं तो है ना फलियां राख लिया फलियां
0: बढ़िया मोटी फलियां छांट राख लो
1: छांट राख लिया बड़े बड़े सिट्टा राख लिया अब ना मैं कूट काट ले कूट काट मैं वो खेती करा
0: वह खेती करो बिना उपचारित वगैरह करने जरूरत को
1: नहीं है
0: एकदम रेडी रेट रहे
1: बिरमान रेडी रेट रहे बिरमान ने पाउडर थोड़ा रड़ा मूंग पाउडर रड़ा बीज दिया तो जान बढ़ लागे
0: अच्छा अच्छा तो साल भर में क्या रखो थे
1: फलिया में राख ले मैं तो
0: अच्छा
1: दिया
0: खराब हो
1: खराब पाउडर नाक दिया थोड़ा
0: बारह काटने तो खराब हो जाए ना
1: हाँ बारह काटे खराब हुए पाउडर नाक दिया खराब कुनी हुआ बाजरी खराब कुनी
0: अच्छा
1: जोरदार हुआ बड़ा बड़ा इतनी हाथ हाथ के सिट्टा हुआ जो टाल राख हर बोरी में भर राख दिया हर बोरी में थोड़ा नाक दिया मैं बाहर लागे कौन था इली लिखी
0: कोई भी तरह कोई
1: गुण मोटा मेरे गुण पर मोटी रखा
0: अच्छा
1: फलिया पर काट राख लिया
0: अच्छा
1: तो हाथ बीज तैयार हुआ
0: ये ना मान लो बात कर रहे हैं ये गोबर की खाद काम लो घर का بیج کہاں ملو کئی جنا بازار لاوے تھیلیاں نا
1: میں لاوے تے لاوے میں تو کن لاوے میں تو وہی بیجا میں لاوے تو میں نے گھڑی مانگے کم فصل نہ ہوے بے برسات زیادہ ہوے جنا ہوے کم برسات وہ کو نے آمنے تو مطلب دیسی ہے بیج
0: دیسی ہے
1: دیسی بیج ہے لمل میں موٹے تانتا دار ہوے

0: इतना छोटा छोटा हुआ
1: तो स्वाद भी ज्यादा हुए।
0: हाँ स्वाद ज्यादा हुए
1: है ना, बाजरी वगैरह
0: बाजरी स्वाद अरबी रामायण बरसात ज्यादा हुए नहीं हुआ पालिया बीज आ कहीं कम बरसात गरीबी खेती है उजावे।
1: सब मौजा
0: सब मौजा आ जल्दी हुए घर में तो बढ़ जावे
1: तो तेज गर्मी हुआ है।
0: हाँ बढ़
1: तेज गर्मी के अंदर ना वो क्या कराना है वो गहरी जुताई कर ले हल वगैरह बाद
0: बरसात हुई नी इन मैंने पूरा खेतम कदार छोड़ दिया।
1: अच्छा
0: अब बार कदार छोड़ दिया बरसात होता ही बिने हलों भिजा दे
1: अंदर कीट वो मर जाओ बाहर
0: मर जावे जमीन मतलब
1: सही हो जाए
0: सही हो जावे नरम हो जावे
1: नरम हो जावे
0: पानी है ना जो खेतम बारे को नहीं जमीन अब कल्ली उड़ी हुए।
1: अच्छा
0: कल्ली उड़े बरसात हुई नहीं जरा वो पानी बेर बारे जाते रहे नहीं अब बार बा पुल्ली उगी नहीं वो जी माइन बेर जाए वो धान
1: पानी अंदर के अंदर
0: प्योश जाओ जरा वो दवा को
1: हरी बीमारी आवे
0: हरी बीमारी दावे रात कोई दवाई यहाँ छिड़के नहीं
1: पूछ छिड़को या
0: मुंह छिड़कने बड़े तो थान खेती बाड़ी में आवे नहीं बतावे
1: रेडियो सुनो
0: रेडियो सुना बतावे दवाई दार लिया
1: के गुरुवार हो गुरुवार
0: गुरुवार
1: जुमेरात गए तो बी दिन है ना आप एक विशेषज्ञ आया करे मतलब कोई डॉक्टर वगैरह बिठा
0: सब बतावे चौपाल
1: कभी बात करी
0: सुना बात बंद करी अभी सुना
1: सुनो थे कभी यान की कोई समस्या हो तो करो बात
0: समस्या हो तो सरपंच करे मैं तो बंद करी नंबर है हर बट आकाश नाश्ता पानी
1: आकाशवाणी
0: नाश्ता पेड़ा मिठो देवे
1: सब देवे
0: सब देवे मायने खुद बोला में
1: अच्छा
0: बताई वो कहा किया करनो किया
1: कोई नई टेक्नोलॉजी काम में ली था गाँव में
0: नहीं
1: तो मशीनरी वगैरह कोई नए कोई नया मतलब नयापन कर जैसे नवाचार एक नवाचार क्या करेंगे नई नई चीजों का प्रयोग करा पा
0: बे करिया कौन था बैर जा रहे हमारे भाई साहब सरपंच साहब दो बार सिकड़े आप बोर बेटपाड़ा में बेफी रहे जावे ना खेती बाड़ी में
1: एक अपना फसल बदल बदल बोवा बीहू भी फर्क पड़ेगी
0: बीहू फर्क पड़े थोड़ा
1: है ना
0: गवार बार बाजरी बहुत चौकी हुई
1: हाथ
0: जाओ गवार नहीं हो
1: जाओ जमीन भी बनोड़ी रह जाओ है ना
0: जमीन बड़ी जाओ अलग अलग बाबा एक मूंग बालिया एक बाजरी बाबा यहाँ अलग अलग
1: अलग अलग फसल बदल बदल बो
0: बदल बाबा जना वो धान चौक हुए एक एक फसल बाबा वो कम हुए
1: कि आप मांगे किसान ने कहीं कहना चाहो
0: किसान आई के मजा पहली मेहनत कर खेत बहु आराम तो धान हुए भी मेहनत करे मैं धान को बाहर छोड़ जाए धान हुए को नहीं बरसात हुई धान जोरदार उड़ी को मती भी गरीब धान बीज जोर पचवा खुदा ही करो खुदा ही बिना धान है को नहीं विकास वगैरह सब सलियो राखो सब मतलब तार आ रखो जानवर बढ़न बजियो
1: माल तो बाड़ बनावा दे
0: हां
1: तार बंदी कर लियो
0: तार बंदी
1: भी मिट्टी का कटाव भी रुक जावे।
0: हां सब मारे चोपे तार बंदी करूड़ी है पेंटर बिका जमीन चोपे तार बंदी करूड़ी है कटी पानी बारे जावे कौन खेत दोरा बन जुड़ा।
1: अच्छा अच्छा
0: तो वो खेत है जो माइन रे फसल जोरदार हुए सा
1: चार
0: साल के माइन मतलब मूंग हुए चोका मांगे
1: फरीद खान जी मांगे किसान जानकारी दी रे वास आप रो घणो घणो धन्यवाद।
0: हां धन्यवाद
2: किसान भाई देखो अबार आप बातचीत सुनी अब लेवा ब्रेक।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: किसान भाई देखो, वो अपा के जो खन्ना साहब अपन बताया भाई, आप फसल चक्र अपनाओ और साथ साथ जो खाद काम में लो, वह अपा के गायें की गोबर वाली, जानवर बकरा बकरी की मींगणियाँ, मलमूत्र वाली खाद काम में लो, यानी देसी तरीकों खेती करो तो आप बहुत ज़्यादा फायदा उठाओ, यानी कि आप देसी खेती करो। जो पहली बडेरा अपा करता, रासायनिक खेती हूँ आप दूर रहो, क्यों भी धीरे धीरे अपा की जमीन खराब हो।

तो किसान भाई देखो, आपने आ सरिता खारवाल का गायडो गीत सुनियो, उम्मीद रखा कि आपने चोखा लगे वाला कि समय को भरोसा कोनी कद पलटी खा ले। तो समय कदी भी किसी वक्त कद बदल जावे बिना आपा ने कोई तरह का ठा पड़े को नहीं। तो किसान भाई आ तो हो गीत और आपा थोड़ी बात करा भाई, आपा की जमीन के अंदर देखो कई बार आपा देखा कि पड़ोस की जमीन में ज़्यादा अनाज उग रहे हो, आपा की जमीन में उग रहे हो कोनी, कई कारण है। तो बीरो भी कई कारण हो सके, आपा की जमीन की मिट्टी होए बीरी जांच करावा खेत की, और खेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद आपा ने पतो लाग जा कि मैं कहीं कहीं पोषक तत्व की कमी है, तो बीरी पूर्ति करा। कई बार आपा देखा करा कि आपा की जो जमीन है बी में जिप्सम का उपयोग करें ना, तो ब्यू भी आपा ने फायदो मिले भाई। जिप्सम का उपयोग करें आपा ने कितो फायदो मिले, जिप्सम में 13.5% गंधक और 19% कैल्शियम का तत्व मिलिया करे। जिप्सम में तिलनी और फसलन और दलनी फसलों के अंदर आपने प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाया करे। राइजोबियम जीवाणु की प्रक्रियाशीलता वह भी बढ़ जाया करे। क्षारीय भूमि में सुधार वास्ते जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण है। दलहनी व तिलनी फसलों में बुआई पहली 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टर के हिसाब आप डालो तो निश्चित रूप में आपा की बहुत ज़्यादा फायदा आपने मिल सके। तो किसान भाई देखो आ तो हुई बातचीत, और भी मारो मन करे कि भाई हूँ बातचीत करा, लेकिन करा कहीं कि घड़ी आपने कहवा कि भाई मकबूल भाई आपने रुकनो पड़ी, तो अब घड़िया के जो तो घड़ी के रुकनो पड़ी, तो आप मकबूल भाई ने दिलाओ सीख करा। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आमने सामने फ़िल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए आन मिलो सजना फ़िल्म से, जिसे गाया आशा भोंसले ने।

आन मिलो सजना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आँखों आँखों में।

आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया आँखों आँखों में, फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए, आप तो ऐसे न थे, फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए जिद्दी फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने ही।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ज़िद्दी फ़िल्म का एक गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फ़िल्म का नाम है ज़माने को दिखाना है।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं

0: राम राम शाह।
1: राम राम शाह, राम राम शाह।
0: ए आप रो नाम वीडियो को कि नीर गांव वीडियो
1: गांव यार वैसा नाम पुसा राम।
0: ओ हो पुसो जी यार हमें कोई करो
1: पढ़ाई करा।
0: ए किती मारे बीचा
1: नौवीं क्लास में।
0: आज नौवीं क्लास में पढ़ी जाओ जो का बड़ो जो का लिखो माइटा कार परिवार का नाम ऊंचा करो बेटा। ए बेटा रे तुम पीट लिखे क्या पीने का खाके को बीजा।
1: पुलिस बनूंगा।
0: आज पुलिस बन जोगी बाजे बेटा रे। ए भाई जी ए गांव का नी गर्मी कैसी के रे।
1: गर्मी घनी पड़ा है।
0: गर्मी में आने मैंने फिरे तो कोनी।
1: हां
0: ए लूर जाप जो राख जियो जा जे राबड़ी ए गांदो ए दईए जिम तोरी जे।
1: आओ आओ
0: ए गांव में परिवार में सब किया नी मार बे जा।
1: जोर का
0: ए जेबा ने खाके रामा श्यामा गई जे।
1: आओ
0: ए काको एक सवाल करे उसका जवाब बिनो
1: दे दे।
0: ए के केड़े आवे थने।
1: हां
0: ए बता के केड़े मक्सर
1: 26

0: ए मुलिकम सलाम राम राम शाही अब्रो न्याम भिजो कोके नीर गांव भिजो।
1: ओ याकूब जी बोलो मैं सर जान।
0: ओ हो याकूब जी मैं सिर में खोई करो।
1: खड़ा खाती है बेर दिया गमला थोड़ा खा दिया बेकर आगे कोई भाई आगे चलो करना अभी आंजा बाजे है।
0: आजा बाजे गर्मी बड़े भाईओ हाउ जीती राख जो
1: ना हाउ जीती है काका।
0: ए उम्र की चीख ले ली आगू भाई।
1: उम्र ले ली काका सरपन खा ली।
0: ओ हो तो भाईओ आबार तो देखो लू चले। ए लू चली जिन राबड़ी है जाजे गांडो जीमदारी जो।
1: हाँ हाँ
0: ए भाईओ ठंड ठंडे कोई काम कर लेनो तावड़े मई बढ़ जीनो।
1: हाँ
0: एक आको एक आटी फेंगे उसका जवाब करोगे कहीं।
1: हाँ करो करो।
0: ए दो अक्षर का मेरा नाम।
1: अच्छा
0: ए सिर को ढकना मेरा काम क्या होता है बताओ।
1: दो मेरा नाम आई कोली।
0: ए डगलूरी।
2: हाँ टाटा।
0: ए भाई को हमने सवाल किया भाई की हमको नहीं आऊं तो तुमको आऊंता है गई।
2: आऊंता है
0: आऊं दाइल भी तो कहीं होता है।
2: उसको कहते हैं टोपी।
0: आकू भाई की टोपी।
2: आ, सही बात है।
0: आकू भाई हो।
1: हाँ जी।
0: दो अक्षर का मेरा नाम सिर को ढकना मेरे काम आप ही हुए।
1: ओ टोपी हुई की।
0: ए जगलूरी।
2: हाँ टाटा।
0: ए आकू भाई से बात बोलो करो। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो डगलू भाई सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम या तो भाई।
1: हाँ बोलो डगलू भाई।
2: भाई हाल चाल है टाटा।
1: ठीक है बल्कि बात है गर्मी नहीं पड़े।
2: तो मारा तो ये सवाल तो उत्तर दे होते।
1: ए वो अभी गल मारी उत्तर दे होते कोई।
2: पहले मार दी तो दे जल्दी से।
1: हाँ देखो चलो
2: गर्मी में अपन टाइम टाइम ठाणू चीज
1: है। गर्मी में तो है ही नहीं है राबड़ी है साथ है।
2: हाँ दूर पे ठाणू चीज है।
1: कुछ भी दूर कमी खावा मैं कुछ भी दूर कौन खावा।
2: सवाल पूछे थे टांटो।
1: लंबी पूछ है लंगूर नहीं।
2: हाँ
1: रिली करती है मोर नहीं।
2: लंबी पूंछ है लंदूर नहीं।
0: अच्छा
2: चूंच है मोर नहीं।
0: आहो
2: ऊपरी ऊपर बैठो टूण है भाई बताओ तो सही।
0: आगू भाई
2: आटो भाई।
1: हाँ जी
2: मन तो ठंडी आते है बताओ।
1: अरे वो किल्डो यो किल्डो
2: किल्डो।
1: हाँ किल्डो यो
2: टाइम सुनाओ था प्रोग्राम में।
1: बा कहीं गर्मी में बा कहीं रेत
2: बोले।
1: हाँ
2: टाटा।
0: हाँ भैया
2: रेट बोले।
0: रेट बोले ढारो ना।
2: हाँ मारना बोले
0: जाऊंगे मारा
2: और चाय है।

0: ए राम राम शाही राम राम शिरो न्याओ बीजो कोकिनीर गाँव बीजो
1: उमा विष्णाई बीकानेरू
0: ए बीकानेरू की जी क्यों बोलो
1: पता वाली बात
0: ओ कहीं करो जे बड़ी बीकानेर में हो
1: बधाई
0: ए कितनी मारी बेटा
1: बारी में
0: ओ चोका बड़ो चोका अली को माई जाकर परिवार का नाम ऊंचा करो बेटा है और सब क्या ने परिवार मारी बेटा काली है पर काग नहीं लंबी है पर नाग नहीं बल खाती पर ढोर नहीं बांधते पर डोर नहीं क्या होती है ए जगलूरी
2: हाँ टाटा
0: ए भाई कह दी हमको नहीं आऊंगी तुमको आऊंता है कहीं
2: आऊंता आऊंता
0: ए जो बताओ भाई को बोलो हेलो
2: हेलो भाई राम राम
1: राम राम
2: टाटो बार सवाल पूछो नहीं भी टूटर बताऊं थी
1: हाँ
2: चोटी वे अपन ला रहे हो नी चोटी
1: जगलू भाई मेरो भाई भी बात करना चाह रहा तेरी हो
3: जगलू भाई राम राम है
2: राम राम भाई राम राम ताई नाम है तारो
1: दर्शन
2: है ए भाई दर्शन है तेरी हटू तो दर्शन है
1: हाँ
2: आ ताई सुनाओ तान प्रोग्राम में
1: किरमी
2: टाटा
0: हाँ बेटा
2: किरमी राडा
0: चा आये तू जाऊं दे कितना
2: अच्छा है।

0: छाज गापी ढोका
1: हां मैं तो डुल पे जाऊं हां
0: अने
1: हां टाटो टाटी डुल पे वाटे मन तो
0: हां
1: और आज काई सुनाओ तान प्रोग्राम में
0: आज पानी नो बरसात रे मारा राम रे ऊपी ऊपी उठारी जो बात पे
1: तो नाओ थी पानी
0: हां
1: टाटा
2: हां मिया
1: ए पीवण ने नावण ने पानी जरूरी है नहीं पे
2: ए बहुत जरूरी तू किधर जाऊं ने
1: अच्छा है।

0: हे मारे बेजा ओ तो भयंकी शिवकी पिसिन को पोगाम।
1: हेलो डोरमैन।
0: ए पोगामी कोई भाई गीत बजने होना चाहूं ता तू कहीं चिमटा हो
1: तगल्याने फोन तन्नो है।
0: ए राम जी अबे काई करयो। अरे यू के रेडियो स्टेशन फोन करनो है।
1: हां रेडियो स्टेशन में फोन तन्नो अपन तो।
0: ए नंबर बेजा
1: इतवार दिन दोपहर 12 बजे 1 बजे की फोन लटानो है।
0: आजा
1: और नंबर है 015-82-240-168।
0: यान बोल बेटा कि मिंडी एको पांचो आटो दुओ।
1: हाँ।
0: ए दुओ चोको मिंडी एको झगो
1: आटो
0: आटो। ए भाई जी।
1: हाँ दादा।
0: ए के भैया का फोन है या सुमे की कुमी में हम लेनी सीखा नु उनका पाना बांचो बेटा।
1: अबार बांचो टाटा अबार बांचो झाड़ी से रहूं मैं पाल बना तो आया है।
0: अहे
1: यहाँ रहूं पुशाराम जी तो आया है।
0: अहे
1: झाड़ी से रहूं जगदीश तो आया है।
0: ओहो
1: जाइलू संपत शांति राजू अनिल तो आया है।
0: अहे
1: थमरू राजू सिंह जी तो आया है।
0: अहे
1: और लोडा का चोटू मनसाराम व्यास वीरेंद्र व्यास तो आया है।
0: अने केनो आगल दी द्वार का फोन गिड़गिड़ी जो
1: टेडियम टेडियम।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थे सुभाष कंडारे और डगलिया की भूमिका में थे संजय पाराशर।
0: ए बेचारी।
1: हाँ टाटा।
0: आप बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है।
1: जितेंद्र कुमार जी माथा पर टोपी है और
0: आओ आज के प्रोग्राम के पशुदूत की ता
1: असो तुम्हार जी डोयल।
0: अबे हंडेश लगाओ मारे बीजा।
1: अबाल लगाओ अबाल लगाओ। स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो डोरमैन।
0: हों दी यू जब आप रे खोके नेर होगे
1: तल्ला ने दिराओ सीट टट्टे है।
0: रोम रोम शाई।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं हरिहरण।

हरिहरन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 103.7 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सह।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: कह सकता।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।